दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सर्फ एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जडान, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: moments, mega cashbacks and gifts.
1: ये स्टार पर्व में TCL घर भित्राउन होस र पाउन होस रु 1,42,500 सम्म को कैशबैक र उपहार हरु 85 र 98 इंच को टीवी में TCL साउंड बार, फ्रिज में CC इंडक्शन कुकटॉप, वॉशिंग मशीन में 6 किलो सर्फ एक्सल मैटिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र 0% EMI नागरिकता भए पुग्छ। शर्त हरु लागू हुने छन्। Global No. 1 Google TV brand TCL CG Electronics.

0: BJ 战舰。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 20437।
1: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

दो कुड़िया साड़ी गली च रेंदिया, एक पतली एक भारी। ओ भारी दाते ब्याह हो गया, पतली लगे प्यारी। के दाल में नमक भुल गई, के दाल में नमक भुल गई। जद खिच के हो, जद खिच के छेड़े ने अख मारी।

0: BJ 淡静 विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
1: अहिले रातिको 9 बज्यो।